तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंतर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंतर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारित बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे लिया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव योग।

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग मिल पाई ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो प्रभ की नो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभ एक कह देख देख नानक इकसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणा नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना, साहब सब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तरह ने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ केंद्र विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो तब दानी दानी सोमानी तल तुम तिरना, तब दानी दानी सोमानी तल तुम तिरना, तुम तरना तल तुम तिरना। जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नूं मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी है और तुम दानी है, तदर दानी दानी तुम दानी तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तदर दानी दानी।

चार पंक्तियां हैं। भागिरदी धर्म दृतांग दागिरदी बेम दिरना भागिरदी धर्म दृतांग दागिरदी बेम दिरना भागिरदी प्रिक्ते बंता गिरदी तोम तोम तोम दिरना।

स्वामी सब विद जाने प्रभ मेरा अंतर जामी जान हर अंतर जामी सब विद जाने और किस पे आप सुनाए

सरदा मन की पूरे प्रभु मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जान दे। जीव दे मन अंदर की मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जान दे। जिदे अगे आके असी शीश नवाने ना, वो जानता कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की, वो चाहता की प्रभु मेरा अंतर जामी जान। मेरा प्रभु जानता है, अंदर की बुझ लेंदा है, वेख लेंदा है कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिए, जो भी चाहिए सतगुरु देंदा है। क्यों?

सोई खसम हमारा तब मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा सब कुछ करन कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा ते जिदा एहो जिहा खसम होवे जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे ते ओदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जाती नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

मानुक अब माने प्रभु मेरा अंतर जामी जान ऊ प्रभु सब कुछ जान साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पे अरदास कर जे तेरे मन अंदर कोई पावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर ओ गुरु पावनी पूरी कर देवे खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए जो खाली चोली आए ने पर के गए ने जो रोंदे आए ने हंसते गए ने ये तो दरबार ही ऐसा है कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक हो जरा जे गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार अंदर शीश दी मांग हुई ते शीश पेटा दे दिता गया है ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे चोली विच दान पा दिता जावे उस दाते दे दरबार च आए जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकदा आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नाल मांग कर लई ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान तू करता सब किछ जानदा गल भी करनी आउंदी होनी चाहिदी दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए दान मिल जांदा आ के कही तू करता सब किछ जानदा तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए मेनू की लोड़ीदा मेरे मन अंदर इच्छा की है मेरी भावनी की है तू परमात्मा जानना है तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं

बूंद में खूना चात्र को क्यों कर तृप्तावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे। पावन लोबी कुसुम बांस का मिल आप बंधावे। क्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे। हर बिन रह न सको एक राती एक रात भी। गैप फायदा है ना ती परमात्मा में ते मर जान जीवत नहीं रह सकता पर सानू ते देनी बीत जान देनी मीने लंग जान देनी साला बद्दी दिन आ जान देनी पर कदी ख्याल ही नहीं कीता कदी सोचिया ही नहीं कदी विचार ही नहीं कीता कि असी भी ऐसी तरफ पैदा कर ली जिन्ना चिर गुरु दरबार विच ना आइए सानू भी शांति ना मिले ऐसा प्यार होना चाहिए। हर बिल रह न सको एक राती किवें जो अमले जो बिन अमले अमली मर जाई है क्यों हर बिन हर

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर्द आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप, सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ये अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ये तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवै, नाम रूपी रस प्राप्त कर। ओ अमल पी जिहड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे। सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिहड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

देवी वर बन गए। हे निरंकार, मेरा खालसा सदा वास्ते कर दिया कला कर, मौत नु वेख के डरे नहीं, निडर हो जाए।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए ये गल समझांदे असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया? वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असीं अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड्ड के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दात दिती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल ढंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कोल कोई ढंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कोल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधव माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तो ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन की कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल दे

अवगुण हारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तू किन्ना दयालु है।

0: ना खंडस अवगुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहते ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध सिंह ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा। साच नाम आधार, जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करदे हन कि यह गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

लताड़ रहे हो। जिहड़ी जनता नूं तुसीं चिड़िया समझदे हो, अपने आप नूं बाज समझदे हो। इस जनता विच मैं ऐसी रूह फूक देंगा

कि ए तिलक मैं कुंजन नहीं देंगा, मैं जुल्म नहीं होन देंगा, किसे दा धर्म खोन दा किसे नू कोई हक नहीं है। ते ओ हाथ नू रोकन वास्ते भावे अपना सीस अपना सिर कटवाना पिया, दिल्ली दे चांदनी चौंक विच सिर ता कटवा दिता, पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, ओ मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

गुर अंगद की पुकारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक रंग हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जब ईरान हर तुम बड़ अगम अथाह।